0: पति बनाओ, खरबपति बनाओ प्रभु, मुझे चंद्र चंद्र दिखाओ प्रभु, मेरे कोई चंद्र भगवान।
1: BFBS गोरखा रेडियो।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: यो BFBS कुल कर रेडियो हो।